कसम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे गम कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरे बंदों के वो तेरे बंदों के तस्वीर बन जाऊंगी। बंद का साथ है, मिलने की रात है, तू क्यों उदास है।